आव साखामक्रानि यागुलो चिंताबुक नायलायानो तिनिनि कक्थुम रग तिनिनि कक्थुम रगतंग जीएनएम जलाबरै ते एएनएम बरै ट्रेनिंग कोर्स 2026-27 रिंग विषय एडमिशन नि बागै अफलाइन ते कयलाय सानजागै तंग कयलाय रिनानि पाइथाकसाल 20 अगस्त 2026 कयलाय रिनानि थायिंखा डायरेक्टरेट अफ मेडिकल एडुकेशन पी बी दास मेमोरियल विल्डिंग बिदुरकट्टा चमुनि आगरतला त्रिपुरा सैसैके सुपुंजा कयलायनि लगि नांमानि डकुमेन्ट्स रक ते रेजिस्ट्रेशन फी साबमिट खालायनानि डिटेल्स रक बाक्सा ख्राय जमा मारिनाय स्राय स्राय खे सायमाननि बागै नायमानो वेबसाइट www.dme.tripura.gov.in त्रिपुरा हाईकोर्ट नि एडवर्टाइजमेंट नंबर HC01-2026 शालमारी हिंके

11 मे 2026 नौ रगई त्रिपुरा हाईकोर्ट ने जूनियर ग्रेड ग्रेड ट्रांसलेटर आचुक थाई बगे सेमोंग आमजोगमोंग एबा रिटेन टेस्ट अंगनाई ओ 2026 बीसीनी 6 सेप्टेम्बर ककतीसालो फुंनी दामची तामफ्रुनिसिमी दिपर दामसा ताम्मा जरा तेब शुक्रबै सैमाननि बगे त्रिपुरा हाईकोर्टनि अफिसियल वेबसाइट नायनानि बगे साजाखा वेबसाइटजों https://thc.nic.in

आयुर्वेद फैकल्टी ते कंसल्टेंट आचुक थैनी बागै वाक इन इंटरव्यू नि जोरा ते शाल रक साखले रिजाखा आउ अबंखा सेबोगो बरक्लांगमानी को डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन नि बखाते कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर ते कंसल्टेंट तलांगजाक नाय त्रिपुरा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर गुमतीबो 17 अगस्त एबखना मानदे एबतांग शालोंग नाय प्रिंसिपल प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर फुंगनी दामचुकुतामई सती थामचिनी बिसिंग कैंडिडेट्स रो इंटरव्यू थायो सगैनानी बागै साजाखा 18 अगस्त 2026 नि शालोंग नाय आचुक थाय असिस्टेंट प्रोफेसर ते कंसल्टेंट

बेदलाय हंगाबो मंद याखरे बलाय हंगाबो तक्सा मैखलु या फंगले हंगाबो देवी खामले सबनो खिबिननी खिबना करई बलि नयाना क्लासै मई

खोनाना निसखा आं नक न टेटांसा र सामुं खोनाना थाङै दङ अजराव आबुन यागुल खोनानानै जायथुंनाय नर कलखा लाइदि 2326253 कगदुक नाम्बार मोबाइल युजर 03810 अकुट नाम्बार नानि तापुगदि

काम चेतन न आकाशवाणी आगरतला ताबुक सिंगसको चिनी तिनी ती पुरजरानी कपरक आवाई पान्दा पुलानो खाना बाइदे सराइ रखनी पान्दा बखरी बदल

0: नायथके फोलजा ताई निनि बखरगो तम बेरजा आबो खुम नायथक सखबले नि नाबना निनि बुं द किसा साइ खनरला सोनाक्षी देवरमाना सोनाक्षी देवर माहाके निनि बिसिंदिन आंसं सिवान तिनि नरक चिनि अर एबा खनावै टंगनाय रक्न पुइला नरकनि बिसिंदै ताम खनारनि हनै नर चाइ तखा रसा पंगदा ना कक तांगदा केरांग कथमादा ताम खनार ग्रनै पुइला जे खनाय टंगनाय रक्न रचा पंग नरक पाल खेर सबै खनार नायना नरनि रचामनि कक थाइ रिम्बो मुरखे ताम सोनाक्षी फाइदेहाके अजनि जों जनि जोंन गिसा खनाय नायलायनाय नरनि बसकांग नरक रसाब थिनिव चोबानान बागिसिनि सार दङ खाम तामना बागि तब्ला तामनाय सारनि बंके नरनो किसा साइ खानारनाय नर तिनसि पहिला नगमा बा सिनि सार हांके रतन सार रतन सार नर जतन हामबाय बे दगदि जतन
1: हामबाय सार
0: ए हामबाय फाइदे हाइके नरनि अजनि जों जनि जोंन पाल खेरचाबलाइदि सार तामनाय द

0: बा बेलाय खोनाथक अमनन सोरोंमानि दा पुलिया ओंखाय ओ थांते फायते अमनन सोरोंते सोरोंते ट्रक ट्रके आफ्रुके केबो दा फोरोंनाय रोखा तांनि माया माया होननाय दांफ्रु
1: फोरोंनाय त गोरै तब एक आजायानो सुमै रहनाय आं दाय ब आं बन दायखला एउटा जिनकामिनि बन रग सोंनाय दा बाहायखे सबखाय बुंन बे बरक त बरबा से ट्रेनिं नग्रिबो इसिरों जायगा साग साग सागबाय थां मानलाय माबा ओंखाय बरक दाम खोनारि ओंखाय दाम खोनारिखाय आमनो आं नासिं नासिगै नग फाय सोरोंबाय आम हाइकेन सोरोंते सोरोंते सोरोंते मानखाता
0: आबो हाइकेन सोरोंते सोरोंते मानखा बु उमरा थाङै मानैखा नों त नार्सारि परिफुरुसे आफोर तामना मोजाङै सानाय नामानि
1: आं केजि टु निसिमि तामते तामते
0: आरो आ जरा त काहामखै से कक्र काहामखै साइस माया खुननानि क
1: त बकिजा मिजा सुब मानखा ककथाय ककथाय खलि ताममाया फता गाय सुरखाय त मान दङ आं आफोर निसिमि न जादु गल जा हेन्डर त्रङो गाय क्लास टु काते इंगिखा क्लास टु हायोखाय रोंगै सुखाता माने अ जादु गल जाङो तामनानि क्लास टु नि परेखाय न आं क्लास टु निया गल आस्ते आस्ते तामां तामां क्लासिकेल किसा हाबना सेंका किसा मिसा मॉडर्न रसामुंग रो तामा खता
0: मॉडर्न रसामुंग के बुर रसामुंग नो आफ्रो नंग सरंका छागरदि
1: बुर रसामुंग नो अबखै तो फोगि थाका मुतो करिख्या
0: मुतो करिख्या ता तो हाइफनो मॉडर्न रसामुंग मॉडर्न कक बर रसामुंग नो नंग सरंका कै जोंनो मॉडर्न रसामुंग नंग खनाटक जाकमानि बा नंग जेता ताम थक जागो आबहाय निनि सुमुनि खरांते खनाना वाने

0: बा बेलाय खोनाथाव दिनै समयनि खरां खामां ताखु देबो खुकजों नारगो चिनि दिनैनि नारवाय ताखु गाथुगिरि ताखु गाथुगिरिनि बुनि तामं नारग खोनाय बानाय दिनै ते खोनाय दङ नारग बुद्दादक सिदाखि नारग ककदुगुवाय गोरोङै ताखुनि हानि जे सोंना मोसौमोन नारग बोसों हरै बानो 2326253 ककदुग नाम्बार तै नारग बनो जे सोंना मोसौमोन बा बन थानि जे खोनाना मोसौमोनैबो नारग खोनाय मानाय ककदुग बै नारग गोरोङै मानो आखे ताखुनों तो समय समयनो कारैनाय नों जे तै तामो तामो होनै साखो Chongpreng khanana sekang pari chinro kogdo kaisa phai tong bok kerang ene en sab tong hello
1: hello da kata
0: hello lam sago samong ka
1: rai kanai ni jitendro se
0: rai kanai taku jitendro
1: taku atu kerene Chongpreng jiji tongkang ke ba kaisa khanar di Bini semua itu belakang kena totong na.
2: Hambai.
1: Apa sih bina kacak kena
0: tuh. Dah belakang hambai.
1: Hambai.
0: Chongpreng to kena rnai. Awan saya cakang Chongpreng no tamna ni bahaya serangka bahaya payah bahaya buka payah Chongpreng punya kisah jono saya kena.
2: Chongpreng bo kaisa sini hukum hukum bagi dalzak sini sirih sirih ni tamong. के चोंग प्रेंग के किसा गिटार हाहाय के आनि मुसुंग माखै बेबाग इन्स्ट्रुमेन्ट न न जतो ताम न न सरंग मानानि बो भाके सरंग मानो के हम तो चिनि कैसे सिरसि दिन ताम बा आं अपन पाइना खा पाइ सरंग का के सरंग मानि तो आनि कुनो अरबो साना थांगा आनि गुरु करै पिया जे अचंग प्रेंग नि गाइड ना मानि माने बब हायके ताम जाखनाय ताम ताम सुर दं अब आं मांखा जिनि बरंग्राम सार क्षेत्र महन देवरमा बिन थानि
0: जा दा बिन थानि नंग अ बिन थानि नंग अमनो सोलोंमं मांखा ओंखाय नों आबनो गारैनाय बन थानाय दं नों समय नों सोलोंमं मानखा ओंखाय ते चंपरें नों बन थानाय मांखा बेलाय ओंखाय चंपरेंगो बुबुर सामंग चंपरें तामजा
2: चंपरेंगो तामजा मांखाय
0: आधुनिक रक तामु जाम
2: आधुनिक तो तामान अफियाबनि Chongpreng ni bokong ke kolok. Ke ya si senaro engko bezal engko ta. Cini borong gunang surjo kuma deberma sembono sodagorun cini bo. Bini Chongpreng ke bini ke bokong bara.
0: Bara.
2: Bo bokong no kolok ngzage ya si semia.

0: आंबो सेमे याताबो गे
1: बो आबोनो बारारिक
0: ए बारारिक हांगे जोंयासी आसे कोलो कोलो का सेना नाय गे आबो बाय हांगे जों मॉडर्न जामुरा आधुनिक गान र तामान ता
1: आधुनिक गान तामान आबो बाय के आधुनिक गान तामान गे ताबुक ताबुक ताम चंगप्रेंगो ताम ताम ए खना नाय
0: चंगप्रेंगो सिनि पुइला फाय माने चंगप्रेंगनि सुर गायनो मायुं तैसा Oma agi ni siri siri ni siri ni tamza payo. Os horong kena song prengo siri no ong nai. Oma haitia.

0: अब जतन अब के सुमी बै तो सारे रग बाने चंग्रेंग तमसने चंग्रेंग रग बैबा खरंग रग खाला मान
1: चंग्रेंग
0: सैटके मानो कब दुख फाइ दरंग सब दो कबरे थी पैखा जंगे थो सूमय चौंग से थो जे थाजिंग कक सका जे दांगदोनी कक सका दांगदोनी किसा थाजिंग तामो तामुई खनार दे

0: आं सया दीबाखनाई दौना बर बहनो बर बोखा बखुक पेप लाइफ बोखा बिंग बोखा बिंग बखु फाय दंग सामत यहां बसखांग मानने फिजिकली याखंड टीसाइन मसाया बोखाले मसाई दू मसाया जेखनाई दौना जो मसाई दू आं सही मानो चीनी खामने खरान खनाने हेलो हेलो
1: बेले
0: बेले हमारे मसामानी हेलो हेलो
2: अभिचरण
0: अभिचरण

आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: पद मूसा मानी तार इतंग जो फोन कलमा मानी रोकनो सिमेंट चार दे नाते मिया तु मा रोकनो चार उदा ता चार उतरंग बुझका
1: आको आं तो हान किसा पेंग माबाई आवन बांगी फानो माता
0: मूसा फान ता चार दे
2: मिया कक मानिया किया सारी माबाई तीन खे बहक से दाई दंगजा सारी गोक डाक्टर से मा फोन गानुले
0: ए नुखादा बुफ्रबो से चार लाई हाइंग लाई दंख तीन तई मूसा फान ता चार से दे कहम खन लाई तो निकीचा नग निबो ता नंखर दे तुमुंग खिमानी लम खांके आनो पिसो किचा टेलीफोन खाई हर दे
1: आं खाइने रिंगा नो निटेली टाला नरो से डाक्टर फाइबे दि
2: इस की मुश्किल आई हिनी न सकांगो चले नाइ नाइ न टेलीफोन खाइने फुरंग दिमासे आबो से दोस्त दं लंगियो थांगि सिपायो मोंग लिया न
0: मुश्किल नुन सुखा ओ बाबा नो बो ताई बुफु तरनां खासि दु हाइके से चालाइ सिना बा
2: आओ
0: आं थांका बाबा टाटा
2: टाटा बाबू टाटा
3: टाटा
2: काम के तंग दिदो नो नितांग को दिसिका
3: आओ
2: सारी गो आंटी फाइके काम का आसु की पूरी दे ताई एबीसीडी रे पूरी दो थांका टाटा
3: टाटा नाने ओ नाने फायान लगी
1: बरो बरो थांगानि नो तामु सामु नांग हाय
3: आं आवांग जानानि नाना आना आवांग दिदे
1: जादिया नमानो फासुंग मानाखै क्लांगु ताचार दिहनो जादिया औ फाइखौ लां हिंजां तोलेसि
3: इहि नानां जाना आवांग
1: दकिदिं खनाग्रा दिहाय सामजानि काबु फादिग नायलेग्राना हैला
3: फाहिम दि नाना
1: फाहिम दि नायलेग्रा नाव मा सिखन थां दंखे थ मायो किनि कुलिबा ताम नासु कापख दुद्रो जाय किनि जाना बिने
2: जाओ काबु आतो माचो कापानि थाग्रि सेमानिया
1: तुमला सान थानि आंवाय से बाउ नायगोना
2: इखला सान
1: तुदि ओमा आसि नाय थिन दका काखै जिल्ला सिद्रावनि दा खुलै ता खाम दे
2: इखला सा तय नों बाय खाय थाग्रि से थांका बाय खैबो
1: उको थुना सेन खाबला नो मायो वाय रोगले तदा दं नों न्यारो
2: गुरै बुरोनि वाय वाया
1: सराय रक्तनि ना हंका वाय रोगो दं ना नांगो वाय रोग चेक चेक खायसे बरक ब दं थ जागु हायफा न वाय से होसो बासिरो खावै फन बाम दिता किसा सुगले दं थ जागन बरक ब
2: आउ तनि कों न नांगु नायलासलाय खम खंखै बासि खावै बाम दं खा गलिबो दं थ जागन खा हामै थांगाता
1: ता दं थ जागल दसले नोंले जागदा खलायमायो
2: खलाया त बसिमिस खलायो
1: हाय फानसे बाहाय खायबो नरगर नग्र खलाय बायखाब्लासो नरनि सागनि नंगना बले अनक थायरो
2: सागनि न त ताइता म कामिनि जा किसे मिसा तंगन न फाले माना राख लायखेता आबो न नायना बा जागा चिकन मासे
1: आउ आबो न मा न आसु नक थाय चिकन चिकन बाहाय खै तंगमान बायना आबोनि बिसिङोसे बेरा खै चुकमा मनि नायदि हामासे कुपुं थियान हाय मा तुंगांले
2: आउ आहाय न आहाय खै न मा तंगला जाता ताइता म खायना बा
1: हाय फानो बेरा फानो रलाया हंगाय तैसा फलांग फलांग तंग थलाय खमु हाय दिबा आंखाय बेरा से नरे खि बायना मुसुं तंग सिउ
2: आकन जतन से रेलाय रेलाय रेलाय हंखाय बा तामसे खायना हनो
1: आबुन ता ओ इको हिंदी मायो मुथुग्रा दि
2: तुम दि काय
1: आं सारि रोग फाइफिरान ता सामु हुं पायो
2: आ
1: फादि किथिं थांलायग्रा नगो थांगा दु मायो
2: आ
4: बाबा ओ बाबा बाबुनु ओ बाबुनु हाय ओ नो के सिक्रिब लासा बियां कमाय थामैगु मरो
0: हाय तामुं खासले आमाले हाय बाबुन के बरसा
4: बियां कमाय थामै गेसिदु
0: ताम माको बाबा ओ बाबा
3: बाबु चुंगरसे
4: आरो ताम खलाइसले फाइदि ददर नगो
0: बाबा निन्ना नाले
1: नगमांग तंगना सेला सोका हनै उरासे ओ मायो बाय कक थाय तंगयो
4: यांग नखै बुक्सा बुबुन सिमिबो माने से कमाय थांबाय नाका
0: हि नों फाइमानि सालसा सिखु बरासे कक सानानि लगि मानैबा नक बुक्सा खिबै मा थांखासलु
4: अमुदे तै तमु हिंजाक्सि নি মানে রসকমায় থাকবে না।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा

समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है।

0: आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
2: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
1: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उप

0: राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
1: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सकें। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित

0: संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
1: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।